नीलकंठ बालमणि महावीर को विज्ञान प्रदर्शनी का नतीजा सार्वजनिक विभिन्न तह का विद्यार्थी उत्कृष्ट। ठाकरे में शांति स्रोत से अपराध नियंत्रण सरकारी सेवा प्रभाव संबंधी सचेतनामूलक कार्यक्रम संपन्न।

0: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
1: विजयादशमी 2081 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला दिउँसोको 2 बज्यो।

दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जना, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

0: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ट्ज
1: विजयादशमी 2081 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना
0: सदा सम्बन्ध सधैँभरिलाई।